0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 or visit asianfuneralcare.com.
1: This month, Mera Boiler is offering a pre-booking sale with a £350 discount on all Bosch boilers. Get a fully fitted 25 kilowatt Bosch boiler for just £1,875, complete with a 7-year guarantee. Call 020-8150-2025 or visit meraboiler.com now. T's and C's apply.
2: With Little Plus, say yes to sunny summer picnics. Get 15% off deluxe dips topped with creamy chicken Caesar and zesty smoked salmon. Now just £1.69 each and Good Housekeeping Institute taste approved. Fancy a dip? Lidl, more to value. 18 plus GB only while stocks last. Terms apply. See lidl.co.uk/lptv. Ends 12th of August.
3: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration and expertise. Where you can laze in luxury accommodation. And kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.

0: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा
1: From the team that you trust at Sunrise Radio comes the station made for your mellow moments. Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. The same Sunrise spirit, just more smooth. Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Available nationwide on DAB, on the Sunrise Radio app, and on sunriseradio.com.

0: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं 2000 पाउंड का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 पाउंड के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए @winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th ऑगस्ट। यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर विथ वन एंट्री पर हाउसहोल्ड। टीज एंड सीज अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू've ट्राइड दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती।
1: At DFS, we know there are so many places to sit in summer, like a sun lounger, or a bike seat. But the most important is the one you come home to. From relaxing recliners to stylish sofas, our summer sale has just the thing for you. DFS, what's your thing?
2: Need anything from Tesco? How about Bella Italia's Easy Ask Italian, Frankie and Benny's La Siguana's Presso Italian and Pizza Express? Triple the value of your Tesco Club Card vouchers and save on meals out with selected restaurant partners. Check the app to know what you're sitting on. Tesco, every little helps. 18 plus club card app required. See tesco.com/rewardpartners for more info.
0: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
3: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777. This is Sunrise, the UK's biggest

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना साडा सोना
2: वसीम ज्वेलर्स।
4: As the clock strikes two, याद आया।
2: जसने सोचा था सिर्फ वाइफ क्यों, लंदन में एक गॉर्जियस गर्लफ्रेंड भी रख लूं। जस को लगा है जवानी तो इश्क होना ही है, पर जब पुराने रिश्ते नए सीक्रेट से टकराएं, तो एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। एक लड़का, दो लव स्टोरीज और अनलिमिटेड chaos।
4: है जवानी तो इश्क होना है, only on Z5।
5: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration and expertise, where you can laze in luxury accommodation and kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
6: My mum started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ki for 3 generations. Khanam ki, the legacy lives on.
7: Khanam ki, a brand from SOP International. Available at all major

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, गोल बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है?
2: Can I use my phone a friend, a cool Raj?
1: जी बिल्कुल।
2: Hi Raj, listen, is it bronze bank, silver bank, gold bank or platinum bank?
3: It's definitely gold bank.
2: I'd like to go with Raj's answer, please. Gold bank.
1: बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
4: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ ओ 0203 500 1111 goldbank.co.uk।
5: जय माता दी, अगर तुम्हारी जिंदगी दे विच कोई भी ऐसी समस्या या बीमारी है या कोई तकलीफ है जिदा कोई हल तुहानू नजर नहीं आंदा, तां तुसी ज्योतिष अमृत माता जी नू कॉल कर सकदे हो, जिन्हां दा नंबर है 0739 292 8586। तुसी अपनी कुंडली पूछो, कुंडली दे विच ही माता जी तुहानू दसणगे कि तुहाडी की समस्या दा की कारण है और की निवारण है।
6: Watch Khatron Ke Khiladi every Saturday and Sunday 8 PM on Colors TV, powered by Starters, associate sponsor Linecroft.
7: My mom started cooking with Khanam Ki in the 70s. Dal Makhni, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using Khanam Ki for 3 generations. Khanam Ki, the legacy lives on.
8: Khanam Ki, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian store.
9: Happy birthday to Bollywood film producer Siddharth Roy Kapoor. And for those celebrating their birthday today, let's celebrate together with a cake from the Cake Box.
10: Birthday greetings from the Egg Free Cake Box. Cake lovers, this one's for you. The new limited edition crunch cake has landed at Cake Box. Chocolate sponge, Nutella layers, chocolate.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

रहती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।